सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनू कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करू आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो तां आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते औगण वाली नूं ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने औगण यारी कंत न पावे बोलो औगण यारी सारे बोलो जरा औगण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी औगण यारी उस मालक नु चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा ओदा सुभा नु इहने जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहना नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणा दियां मालक ने ते आपा इस करके गुरमुख प्यारो मेरे सतगुरु दे चरणा विच बेनती करनी आ कि आपा नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वा मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वोहे

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वड्याई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न भेटन पावे। और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न भखे पड़हारे, अग दे लाटां बलदियां सी इहदे चार छपेरे जीव दे, उर्द मुख महा गुबारे पुट्ठा मूह थले नूं लत्तां तां नूं, ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा। मगर उथे ए जाप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जदों जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री, जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे, ते ध्यान देना है उथे लिखिया सास सास संभाले सोई। ए सास सास उस वाहगुरु नू याद करदा सी, उथे अग दे विच गुरमुख प्यारियो ए 24 घंटे वाहगुरु दी याद विच जुड़िया सी, ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छडाए लिया इनू, उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छडाए लिया। बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम। उथे पुठे लड़के नू किन्ने छडाया खसम दे वाहेगुरु ने, ते जदों इथों छडा के बाहर लै आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गज के आख्या करो, उस फोटो नू वेख के उस तस्वीर नू वेख के कि उथो छडा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथो छडा के बाहर लिया, विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गर्भे निकल आया, जो बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया, फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया। बस विचों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने। ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया। मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अग्न उधर मैं तैसी बार माया, जितना अग्न अग दी अंदर च तरले पाउंदा सा है मैं सड़ जूंगा, आ बार माया दी अग विच वी बंदिया इत्थे वी तरले पा उस वाहिगुरु नूं, इथे भी तेन जे अंदरों की अग विच उन्हें छड़ाया वा ना, ते इस अग दे विचों भी तेरी सहायता उन्हें ही करनी है, इथे क्यों भुल गया है। ए अग विच सड़ जाएगा जे अंदर दी विचों बच के आ गया वा, ते अरबा संखा नीला रूहां बाहर दी अग विच ममता दी अग विच मोह दी अग विच काम दी अग विच सड़ गई, जे इस अग तो भी बचना ही ते हुण भी जपया कर सतनाम श्री वाहिगुरु, हुण भी वाहिगुरु का सिमरन करिया कर, हुण भी बंदगी करिया कर, हुण भी आवाजा मारिया कर उस मालिक नू, हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मात गर्भ में अपन सिमरन दे तै तुम राखण हारे। इथे भी हुण पावक सागर था लहर में तारो

0: वेखो किन्ने प्यारे चक्कर खंड निवात गोड़ अगे माखियो माझा दुध ए सारियां चीजां आपां किसे ना किसे समय चख के वेखियां। शक्कर खा के वेखी, खंड खा के वेखी, निवात दा मतलब मिश्री खा के वेखी, माखियो दा शहद खा के वेखिया, माझा दुध पी के वेखिया। मेरे सतगुरु ने सारियां चीजां दा नां लैके जिन्हां ने चखिया उन्हां नूं इस गल दा पता लगा। आखो सतनाम श्री। ए गल उन्हां ने आखे अलौती का जैसे पया बरेडा, बोलो अलौती का जैसे पया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया, जिन पिया तिन जानिया। बाबा कबीर कहिंदा है गर्मी होवे ठंडा पानी होवे ते मिश्री दा बनिया होवे शरबत मिश्री दा, अलौती का जैसे भया बरेडा, मिश्री दा शरबत होवे एडा सरबलो दा कौला भरिया, ते फिर जिन पिया तिन जानिया। ये ते जिन्ने पीता है ओनू पता ना फिर मिश्री दा शरबत किन्ना आनंद देई है। इथे भी बाबे फरीद ने जदों उस परम पिता परमेश्वर दी बंदगी दा रस चख लिया, ओदी मिठास वेख ली, ते हुण कहिंदा नहीं शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध ए सारियां चीजां हे वाहिगुरु बड़ियां मिठियां ने खा के वेखियां ने। हांजी अगे दी
1: सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद।
0: बड़ा प्यारा बचनिया साहब जी कहिंदे ने सबे वस्तु मिठियां। इथे खिलारो एक बार सारे आखो सबे वस्तु जिको आपा कहने। ए ते गल ठीक है, ए ते गल पर अगे ना पर आ भी ते गल है, आ गल जेड़ी है होर आनंद दी आ। इथे भी मेरे सतगुरु कहिंदे ने इहदे विच कोई शक नहीं कि शक्कर मिठी नहीं, इहदे विच कोई शक नहीं कि खंड मिठी नहीं, इहदे विच कोई शक नहीं कि किते शहद जेड़ा वा माखियो दा ओह किन्ना मिठा है, इहदे विच कोई शक नहीं कि माझा दुध किड्डा प्यारा है। एक बार भाई नंद लाल साहब नूं किसे गुरसिख प्यारे ने पुछ लिया कि तेरे सतगुरु गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने जदों मुंह दे विचों बोलदे ने उन्हां दा एक एक बचन किन्ना क मिठा है। आखो सतनाम श्री। जरा गज के आखो समा हो चलिया है मेरा गुरु नानक तुहाडियां झोलियां भर के घरां नूं भेजे। आखो सतनाम श्री। जन्मां दे भुखे आयो गुरु नवाज दवे। आखो सतनाम श्री। तेरा सतगुरु जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब बोलदा वा किन्नी क मिठास आ। ते भाई नंद लाल साहब ने छेती नाल आखिया जिन्नी एक खंड दी बोरी मिठी, शक्कर दी बोरी मिठी। ते फिर छेती नाल कहिंदे नहीं नहीं मैं गलत कह बैठा, मैनू माफ करियो मैं गलत कह बैठा। उन्हें कहा दस फिर किन्ना क मिठी है। उन्हें फिर एक बोरी दो बोरियां करदे करदे कहिंदे ने आ दो जहान लोक ते परलोक शक्कर दे बन जाण, लोक ते परलोक शक्कर ही हो जाए। ते जिन्नी ओदी मिठास आ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਮਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਦ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਦ। ਹਾਂਜੀ

0: गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
1: गुरु अगे कृपा करो बेनती करो हे मेरे सतगुरु ऐसा रंग चाढ़ दे एक बार जेड़ा रंग कह दे काया रंगन जे थिए प्यारे पाईए नाओ रंगन वाला जे रंगे साहेब रंगन वाला जे ऐसा रंग कहते एहो जिहा रंग चढ़ दे बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जदों फरखशीर ने फड़िया ते गुरु दे सिखो कहते अपने वड्डे वडेरिया का इतिहास पढ़ियो अपने वड्डे वडेरिया का इतिहास पढ़ के उत्ते गर्व करिया करो माण करिया करो उहदे उत्ते 700 साथी दे नाल जदों फड़ के खड़िया ते रोज वारी सिर गुरु दे सिखां दे सिर कलम कीते जांदे सी दिल्ली चांदनी चौक ते आखिर जदों सूरमे की वारी आई पिंजरे दे विचों कढ़िया ते इतना बहालिया सी जंजीर मारे सी ते चार सफेरे पहरा सी ते आखण लगे हुण दस गुरु दे सिखा एक पासे मौत ही एक पासे गुरु ही दस की चुनना ही ध्यान दियो सिखी जदों परखी गई पता नहीं किस तरह की हुण आर्टिफिशियल जी सिखी बन गई है निकिया निकिया गल्लां ते शराब की गलासी ते सिखी डिग पैंदी नाई की दुकान ते सिखी डिग पैंदी दो चार पांच रुपये मिल जाण कौडियां दे पास सिखी विक जांदी है अज दा सिख सिख कमाउंदा कितना है इहदे मन विचों शरदा टुट क्यों नहीं गई है दो गल्लां रख दित्तियां एक पासे सजना आ तत्ता कीता जमूरी ते तेनू असी मौत भी यह नहीं कि गोली मार के मार देना है इस जमूर दे नाल तत्ते कीते नाल तेरा बोटियां नाल मास तोड़ना है ध्यान दियो अज मैं बच्चे नू दस रहा सा ते कहिंदे इतना उन्हू शहीद कीता मैं कहा गुरमुखा कि पढ़ के वेखो ओहदा इतिहास इतना गुरु का सिख बह गया ते जलाद लैके जमूर इतना इतना आ वेखो तोड़ तोड़ के तत्ते जमूरां दे नाल बोटियां मास दियां तोड़ियां ते हर बोटी टुटन दे नाल कहिंदा सी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जे को किसे नू नशा चढ़दा है ना किसे दे प्यार विच आण के ओहदियां अखां विच नेत्रां विच लाली चढ़दी जांदी सी ते बोटियां तोड़ तोड़ के जदों खूनों खून कर दिता ते फिर भी गुरु दा सिख ना डोलिया ते फिर जलाद कहण लगा बाबा बंदा सिंह साडे कोल इक होर तरीका हैगा है तेनू मौत दे खौफ तों भी ज्यादा डराउण वाला ते गुरु दे सिख ने नेत्रां विच खून भरिया सी आख्या ओह किहड़ा ते फिर चार साल का पुत लिया सामने आखो सतनाम श्री इतिहास के पन्ने पढ़ो बाबा बंदा सिंह बहादुर का चार साल का पुत लिया आखन लगे ए पुत के कह लगा सतगुरु का बख्शिया दास का पुत है कह लगे फिर तेनू ए ते तेरी कमजोरी हो ए ते तेरी वीकनेस होगी ए वेख के तू सिखी छेगा कह लगा नहीं वह सजना ए वाल वेख के ते रंग होर चढ़ गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਰੰਗ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਇਹ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੰਗ ਹੀ ਐਸਾ ਚਾੜਿਆ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਮੌਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪਾਤਾ ਲੰਮੇ ਤੇ ਇਤਰਾ ਤਿੱਖਾ ਛੁਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਰੋਜ ਨੀ ਮਿਲਦੇ ਪੁੱਤ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੀਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਛੁਰਾ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਛੁਰਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

सारे आखो सारे ही हुण आपां व्यापार करन आया। एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे तो एक एक बचन कीमती, गुरबाणी सारी हीरियां मोतियां जवाहरां नाल मड़ी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ा। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा बचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जानिए, बोलो तां व्यापारी, व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसी व्यापार करन ते सारे ही आए हो, हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल जाए ना मेरे मित्रों गुरसिखो भाईओ, ते उन्हूं लोकी कहिंदे नहीं इहनूं व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चल तां वा गुरमुख प्यारे हो के कुछ तां व्यापारी जानिए लाहा लै जाओ, लाहा व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने दसां रुपया की रास पा के दिती सी, इह दसां दे नाल सौ कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है, मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दिता परमेश्वर ने सुवास, आखिया एक एक सुवास दे नाल परमेश्वर की बंदगी करके लाहा खट के आई, मगर इथों कोई गुरमुख रूहां ते लाहा खट के चले गईयां, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेड़े मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु की गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीवो पौल खंडे धार होए जन्म सोयला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेड़े मन दियां गल्लां सुनदे रहे। मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख चले।

0: गुरु आखो जी सतनाम श्री भाई रे भाई रे राम कहो भाई रे राम कहो बोलो भाई रे
1: राम कहो
0: चित लाए हर जस वखर ले चलो इथो जान लगे पंडा बन के जाओ इथो जाके लाद खेप संतें संग चाल जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया तज मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे में लाद खेप गड्डे लद के जदों सरकारे दरबारे जावे तू निरंकार दे दरबार विच ओथों तक तेरे गड्डे खलोते होण ते पुछण भाई कौन आया है ते आखणे पजनीक सिंह आया है ए जरनैल सिंह आया है ए रजिंदर सिंह आया है ए गुरु का प्यारा आया है की करके जी ए गड्डियां दे विच की भरिया है ते किते ऐसा ना होवे फोल फोल के वेखिए ते विचों चुगलियां निकलन विचों निंदिया गड्डे ते दोवां दे लदे जाने ने चंगियाईयां बुरियाईयां बोलो चंगियाईयां फिर एक बार आखो कादे गड्डे लदे जाने चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हजूर उस धर्म की हजूरी विच जाके धर्मराज के हजूर विच दो ही चीजा ते परखियां जानियां बंदिया तेरिया चंगे ते मंदे कर्म ते वेख कोई एहो जिहा कर्म कर तेरी एक एक पंड दे विचों निकले सतनाम श्री वाहिगुरु तेरी एक एक कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी आ बचन जरा चंगी तरह बोलो कि अज जा कल उथे जाके तेरी गठली खुलनी गांठुली गांठुली मैने गठ इथो जज हुंदा बाणी विच मेरे साहब कहिंदे ने कि गठा मार रहा बंदा हर रोज इहदियां गठा बन रही ने ते कहिंदे कहो नानक समझ रे आने बोलो कहो नानक समझ रे हे मेरे आने मना हे आने जीव ए गल समझ ला कि आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी उथे निरंकार दे दरबार च तेरी गठ खुलनी है चेता कर उस गठ दे विचो की निकलूगा किते चुगलियां ना निकलन किते निंदिया ना निकले किते शराब दियां बोतलां ना निकलन किते मास ना निकले किते कुकर्म ना निकलन जेड़ी जेड़ी तेरी गंढ परमेश्वर खोले ओदे विचो निकले सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु
1: सतनाम वाहेगुरु
0: भैणो गज के मेरिया धियां गज के जरा बोलो

0: अमृत वेले उठो, इशनान करो, बंदगी करो, ते फिर सूरज दी टिक्की चंड तक जागदे रहो, वाहगुरु वाहगुरु दा जाप करो। जदों मुंह तो रसना तो बंद हो जाए, फिर मेरे गुरु नानक दे चरणा च जुड़ के गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु। फिर घंटा इस अभ्यास विच लग जो, एक ते दिन बार बार आने ने, एक घड़िया कित बार बार आनिया ने, एक दिन जेड़ा अज लंघ गया कल दोबारा नहीं जे आना। एक गल नोट कर लियो, आप पिंडा च रहने वाले हां, जेड़ा पानी एक बार पुल दे थलों दी लंघ जाए दरा आउंदा जी, कहिंदे ने जेड़ा पानी एक बार पुलां दे थलों दी लंघ गया वह दोबारा नहीं, जेड़ा सवास भी मुंह चो प्यारे हो निकल गया वह दोबारा फिर नहीं मिलना। इस करके जिन्ना अभ्यास जिन्नी बंदगी हो सकती है अपने शरीर के कोलों करनी करो। हां जी,
1: जो बन जांदे ना डरा, जे शहर प्रीत ना जाए।
0: ये भी बड़ा प्यारा बाबा फरीद जी का बचन, एकाग्रता विच आण के आपो अपने बच्चियां दे एक बार भले लई आखो सतनाम श्री वाहे। जे तुहाडी इत्थे औलाद बच गई ते सब कुछ बच गया, उहदे भले लई आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पंथ दे भले लई एक बार आख दिओ सतनाम श्री वाहेगुरु। बाबा फरीद जी कहिंदे मैनू डर इस गल दा नहीं कि मेरी जवानी चले चली, ध्यान दिओ जवानी चले चली, सानू तो इस गल दा ही डर रहिंदा है। जे जरा दंद कमजोर हो गए तो दंदा दे डाक्टर वाल भज गए, जे अखां कमजोर हो गई तो चश्मे वाले भज गए, जे जरा कहीं वाल आने शुरू हो गए तो डब्बी खरीद लिया, डब्बी समझदे हो ना, डब्बी डब्बी कालख दी डब्बी मुंह दे उत्ते फेर दी कि मैं कितने बुढ़ा ना हो जा। मगर बाबा फरीद कहिंदा मैनू बुढ़े होने का कोई डर नहीं, आखो सतनाम श्री, मेनू बुढ़े होने का कोई डर नहीं, मगर एक गल का डर आ कि मेरा रब नालों प्यार ना टुट जाए। फरीदा जोबन जांदे ना डरां, बोलो जोबन जवानी जानदा मेनू कोई डर नहीं। ए शरीर जजरी है, इस नू जर पहुंचे आए बढ़ेपा आना ही आ। जे बचपन तो बाद जवानी आई सजना ते उदो तू खुश होयो कि मैं जवान हो गया वा, ते बुढ़ापे नू कोई रोक ही नहीं सकदा। जे तेरे बचपन नू कोई रोक नहीं सकया, वेख तू छोटा।

0: देखतु साहेब सच्चे वेखतु साहेब
1: सच्चे वेखतु साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडे वल झाती मार एक चिट्ठियां लिखियां ने मिशनरी कॉलेज वालिया चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईया चिट्ठियां लिख ते उना दे विच दोखी ते लिखे ने उना दे विच एही ते लिखिया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक जी मैं तुहानू आ बेनती करदी हां मैं तुहानू आ बेनती करदी हां जीव आत्मा वालों चिट्ठियां लिखियां कदी पढ़ियो कदी चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईया फिर बोलो चिट्ठियां लिख आपां वी एक बेनती करिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक एक छोटी जी बच्ची आसन सोल पांच क साल दी बच्ची सवा क लख दा इकट्ठ संगत गुरु नानक दे पुरब ते जुड़ी जो बिहारी जो बंगाली जो सिख उस इलाके का ट्रकां वाला बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उधर रहिंदे ने टाटा नगर आसनसोल हजारी बाग ए शहर बड़े सारी संगत वाल हाथ जोड़ के कहिंदी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारी संगत वाल उंगला मार मार के कहिंदी ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक है नीला घोड़ा ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक की है बोलो नीला घोड़ा ते ओ बची सारी संगत वाल हाथ करके कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा च हाथ जोड़ दी नीले नू कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा विच हाथ जोड़ दी आ एक बार मुड़ के आ एक बार मुड़ के आ ते अपने सवार नू उत्ते भाल के लिया ते मैं तेरी लगाम फल पांच साल दी बच्ची कह रही मैं तेरी लगाम फल लूंगी ते मैं एक एक सिख दे घर विच तेरे सवार नू लैके जाऊंगी ते जदों घर दे विच बच्चियां दे कट्टे केस दाड़ियां कट्टियां शराबां दियां बोतलां मांस पिया विखाऊंगी ते मैं आखूंगी नीले दे शाह सवारा इन्हां लई पुत वार के गया है इन्हां लई मां वारी सी इन्हां लई प्यो वारिया सी आ वेख तेरा सारा पंथ अज तेरे तो बेबुख हुंदा जांदा ही मेरा कहण दा मतलब है तुसी भी एक बार बापू नूं कहो तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडा जीवन हो गया चिंता दी मंजे ते सुते ही दुखां दा वाण ही चिंत खटोला वाण दुख बिरहे विछावण लेव तलाई विछोड़े दी विछियू इस तरह के मंजे ते असी जीवन बतीत कर रहे विछोड़े दे विच सड़ रहे तेरे दे विच अगला वचन सरवण करो जी
1: बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान
0: बड़े सुंदर वचन किते ने बाबे ने हुण समाप्ति करांगे एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री बाबा कहिंदा दुनिया कहिंदी विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा बड़ा माड़ा आपां कहिंदे ना विछोड़ा बड़ा माड़ा है एक थां ते लिखिया गुरबाणी दे विछोड़ा सुने दुख विछोड़ा विछोड़ा एक इहो जिहा शब्द है जिहदा नां लिया ही दुख हुंदा है मगर इत्थे बाबा फरीद जी बड़े प्यार दे वचन विच कहिंदे बिरहा बिरहा आखिए लोकी कहिंदे विछोड़ा विछोड़ा मगर बिरहा तू सुल्तान तू ते बादशाह है बिरहा तू ते पातशाह है केड़ी गल्लो जी हां जी
1: फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान
0: कहिंदे जेदे विच हिरदे विच ए विछोड़ा ही नहीं जेदे अंदर विछोड़ा पैदा ही नहीं होया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे जिन्हें कदी ये क्या ही नहीं जन्म जन्म

गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूरख किश दीजे प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजे।

वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वो तो बिना उदास हो गई है, सिर देन नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे तेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नू नहीं देख दियां, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसीं वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी।

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने वो दी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी वो दी सामने वो दी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चोर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चोर हो सकता है होर किसे चोर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़ा 13 सिखां गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चोर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चोर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे हो इहदी फोटो दे उत्ते उहने चोर रखे ते चोर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदिआं दास ने पहलों मारी फोटो भुआ के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेशर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे हो बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

0: कड़िए कड़िए मारिए पहरी लहज जाए।
1: वेखो बाबा जी का कल वाला बचन आप जी ने सुनिया सी कि दर दरवाजे जाए के, बोलो दर दरवाजे क्यों डिठो कड़ियाल वेख्या जे कदी ए नदोशा मारिए इन नदोशे नू मार पैंदी। हम दोषा दा क्या असी दोषी जने आ, असी किन्ने क दोष कीते ने अपने आप नू पुछो। दाग दोष मुंह चलिया लाए दरगे बैसन नाई जाए जेता मोह प्रीत स्वाद। आपा कहने जी मैं केड़ा दोष कीता है, जिन्ना मोह आ ए भी दोष आ, जिन्नी प्रीति संसार ना ए भी दोष आ, ते जिन्ने जीभा दे स्वाद ली रस माणे दे ए भी दोष ने। जेता मोह बोलो जेता प्रीत स्वाद, ए तीन गल्लां गिण गए मेरे गुरु नानक पातशाह। जिन्ना मोह प्रीति ते स्वाद आ ना लाए तू मुंह नू, ए सबा कालक दागा दाग, ए तेरे मुंह दे ते कालख दे दाग लग गए ने। ते जिन्हां दे मुंह दे ते कालख लगी होवे, जिन्हां दा मुंह काला होवे, उहनू चंगे लोकी कोल नहीं बहन दिंदे। एक बार पिंड दे विच किसे ने बजर गलती करती होवे ते आपां सब तो वड्डी सजा उहनू की दिंदे सां, मुंह काला करा के खोते ते चढ़ाउणा। ते फिर सारी उमर ली पिंड दे लोकां ने उहदे दादियां पड़दादियां तक याद रखना, पोतरियां तक याद रखना कि इहदे दादे दा मुंह काला कीता सी, ते इहदे नाल मेल वर्तन नहीं रखना। मेरे सतगुरु कहिंदे जिन्ने मोह ते प्रीति स्वादां दे विच तू पियावां इह तेरे मुंह दे उत्ते दाग लगदे जांदे ही। ते मेरे साहिब जी कहिंदे इह नदोशा मारिए हम दोषां दा साडा की हाल होणा है, अग्गे किन्नी मार पैणी उस निरंकार दे घर विच जाके डरिया करो। थर हर कंपे बाला जियो क्या जाना क्या करसी पियो। थर थर कंबदी है जीवात्मा, पता नहीं उस घर में जाके किन्नी सजा मिलनी। मगर जिन्हां नूं जाग आई, जिन्हां नूं पता है कि किते जाना है, जिहड़े बेपरवाह होके कहिंदे किते भी नहीं जाना, उन्हां नूं कहदा है इह ते उदन पता लगना जिदन फड़े गए। हुण मेरे सतगुरु जी अगले श्लोक विच कहिंदे ने फरीदा इनूं वेख घड़ी घड़ी पिछों पैर पैर पिछों। आप जी नूं पता वा कई चार पैर पैर पिछों वजदा सी, ओ टल जिहड़ा खड़कदा सी, किसे नूं एक घंटे बाद वजदा सी। घड़ीए घड़ीए मारिए पैरी लै सजाए, किते पैरां करके सजा मिलदी, किते घंटिया बाद ओनू सजा मिलदी जिहड़ा टल बूहे दे अगे टंगिया है। हांजी
0: सो हेड़ा घड़ियाल ज्यों दुखी रहण विहाए।
1: ए विशा चल रहा ए विस गंदलां दा। बाबा जी कहिंदे ने जिन्हां ने विस गंदलां दे पिछे लग के अपना जीवन बर्बाद कर लिया, जिस तरह ओ मार खांदा ते दुखी हुंदा वा, सो हेड़ा हेड़ा मैंने शरीर, ओ शरीर भी रोगां दे विच पै के, दुखां विच मोह विच पै के, कलेशां विच पै के इस तरह ही दुखी हुंदा जिस तरह ओ टल दुखी मार खा के हुंदा। सो हेड़ा घड़ियाल ज्यों, उस घड़ियाल वांग ओ शरीर भी दुखी रहिंदा है। दुखी रहण विहाए, उहनां दे भी

0: सिर कंपे हो ते पग डगमगे दा मतलब डगमगा गए, रखने किते चाहुंदा सी रखे किते गए, गड्डी ते चढ़न लगा पैर रख के उत्ते पैर उत्थे रखिया नहीं गया, पैर डगमगा गए, सिर कंबण लग पिया। तीसरा कहिंदे नैण जोत ते अखां जोतना तो हीणिया हो गईआं। तू दस फिर बंदिया कहो नानक ए बिद पई, जदों ए तेरी हालत होगी सिर कंपियो पग डगमगे नैण जोत ते हीण, जदों ए तेरी हालत होगी कहो नानक ए बिद पई फिर तऊ ना हर रस लीन, कितना हरी दे रस विच लीन होएगा, फिर गले दी बलगम करेगा दूर के अपने शरीर दीआं पीड़ां बाहां कुटेगा के सिर दर्द दूर करेगा के अखां नाल गुरु साहब दे दर्शन करना कितना कर लेगा। कहो नानक ए बिद पई तऊ ना हर रस लीन, उदो हरी दे रस विच लीन नहीं होया जाना। जे कुछ कर सकदा ते हुण कर, नैणो नीर बहे तन खीना, अखां चो पानी वग गया तन कमजोर हो गया, नैणो नीर बहे तन खीना भय केस दुद्ध वानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे, हुण की करेगा। मेरे सतगुरु पातशाह जी इथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहिंदे ने बुढ़ा होआ शेख फरीद, ते बुढ़ा होण दे नाल की होया फिर कंबण लगी दे, ए शरीर कंबण लग पई, हथ कंबण लग पै, पैर कंबण लग पै, जीभा कंबण लग पई, सारा जीवन बर्बाद हो गया। हां जी
1: जे सो वरिया जीवना पीतन होती खे,
0: नाल ही कह दिता है कि बंदिया ए गल नोट कर ली किन्नी क दूर। आपा कहने ने सौ हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। एक मेरे सतगुरु पातशाह जी वचन करदे ने कहिंदे तू कदी सोच रे मन राम स्यो कर प्रीत, बोलो रे मन भाई रस विच आण के आख्या करो रे मन राम स्यो कर, चलो इतना पढ़ लो राम स्यो कर प्रीत, रे मन राम स्यो कर प्रीत, राम
1: स्यो कर प्रीत,
0: गज के

बड़े प्यारे वचन ने, समझण दी कोशिश करियो। एक बार आखो सतनाम श्री वाहे, खोजद्या खोजद्या ओ अमृत मिल गया। जेड़ा अमृत पीण दे नाल जीव अमृत अमर हो जांदा है। अमृत पीवे अमर सो होए, बोलो अमृत पीवे अमर सो होए। एह हर रस पावे जन कोए, कोई किते करोड़ां दे विच्चों नहीं, ते छोटे छोटे संख्या ने अमृत तो दूर रख लेना है। जेदे ते सतगुरु गरीब नवाज बाबे नानक दा हर दरवाजा मेहर दा जेदे घर नू खुल गया, ओदी रूह ने आखना चलो अमृत छकीए गुरु वाले बनी है। नहीं ते निके निके फुरनिया ने एवें निके निके फुरनिया ने गुरु दे अमृत तो वांझिया कर देना है। एहो हर रस, बोलो एहो अमृत की आ, हरी दा रस आ। एहो हर रस पावै जन कोए, कोई दा मतलब कोई करोड़ां दे विच्चों जेदे ते मेहरबान बापू होवे, ते जिन्हां नूं इह हरी दा रस मिल गया अमृत नाम आ उस हरी दे रस दा, ते साहिब कहिंदे ने अमृत पीवे अमर सो होए, अमर हो गया। अमर दे अखरी अर्थ समझो अमर, अमर शब्द आपां कहिंदे कई वार बहुती वार ते पता नहीं हुंदा सानूं, अमर मरन तो रहत, जिन्हें हुण मरना ही नहीं। साहब कहिंदे ने इह पक्की गल आ, जिस जीव दे मुंह दे विच अमृत पै गया उन्हें नहीं मरना मुड़के। अमृत पीओ सदा चिर जीवो, हुण सदा चिर वाला जीवन मिल गया। रोज रोज दा आवा गवन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुर देव। सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा आवा गवन दा चक्कर आ जीव आत्मा दा, जदों गुरु दी शरण विच आउंदी आ, गुरु दी पनाह विच आउंदी आ, गुरु दी बारगाह विच आण के डिग के अमृत दी दात मंगदी आ अपने बापू दे कोलों, ते जन्मां दी विछड़ी होई नूं जदों अमृत मिल जांदा है, उस दिन इहदा आउण जाण दा चक्कर मुट गया। आवा गवन मिटे, बोलो आवा गवन। बड़ा ढिल्ला बोलदे हो, गज के बोलो। बाबा नानक तुहाडे ते मेहरबान होवे। आखरी दीवाने अज पता नहीं नदी नाम संजोगी मेले ने रस बख्शो, दास नूं भी सेवक दियो सेवा दियो। आवा गवन मिटे, बोलो आवा। कदों प्रभ सेव, जदों प्रभु दी सेवा विच हाजिर हो गया, जदों आप त्याग शरण गुरदेव, आपा छड के त्याग के गुरु दी शरण विच जीव आत्मा डिग पई ना आण के, ते साहिब कहिंदे ने उदन इहदा आवा गवन मिट गया। इउ रतन जन्म का होए उधार, ए रतन जन्म दा उदार हो गया, एदा भला हो गया जीव आत्मा दा। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने ए जिहड़ा हरी दा रस आ जिन्हां नूं मिल गया अमर हो गए, उन्हां मुड़के मुड़ना नहीं, उन्हां ने मुड़के किते नहीं आउणा। कोई जीव आत्मा चक्कर दे विच ना, उस दिन तो ए अमर हो गई जिदन तो इहनूं अमृत मिल गया। अनंत अनंत जन्म दी बंदगी करन वाले बहुत सारे लोग जिन्हां नूं अमृत नहीं मिलिया, मैं सतगुरु दी हजूरी विच मेरे गुरु दी फिलोसफी मुताबक कह रहा वां कि उन्हां दा आवा गवन नहीं मिटदा जिहड़ियां रूहां अमृत नहीं छकदियां। आखो सतनाम श्री, फिर आउणा पैंदा है, फिर आउणा पैंदा है, फिर आउणा पैंदा है। कहिंदे जी असीं बाणी बड़ी पढ़दे हां, सिमरन बड़ा करदे हां, जे अमृत ना छकीए ते साडी गति नहीं हो सकदी, नहीं हो सकदी। ए डंके दी चोट ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज दे विचारां मुताबक दास राव जी दा कह रहा है कि जिन्ना चिर जीव आत्मा अपना सिर दे के गुरु दे चरणां विच मिटदी नहीं, जिदन मिट गई उदन बन गई, जिदन मिट गई ओदनी बन गई। जिन्ना चिर मिटदी नहीं, जिन्ना चिर आण के डिगदी नहीं चरणा दे विच, उन्ना चिर आवागमन मिटदा नहीं। मेरा सतगुरु गरीब नवाज पातशाह होर इशारे करनगे, आखो सतनाम श्री। मेरे साहब नूं जदों सिद्धा ने पुछया सतगुरु जी तुसी मैनूं कृपा करके दसना करो कि जे तुसी हरिद्वार गए हो ते पांडे तुहाडे चरणा उत्ते डिगे ने, ध्यान देना है, जिती नौ खंड पृथ्वी, बाबे ने कोई एक देश नहीं जितया, बाबे ने दो देश नहीं जिते। ए ते साडी बदकिस्मती आ कि धन गुरु नानक पातशाह दे चरणा ते चलण वाले प्रचारक मुक गए। धन गुरु नानक वर्ग वर्गे दरवेश प्रचारक नहीं इस कौम विच रहे। जे हरिद्वार गए ऐसे ज्ञान दे तीर मारे हरिद्वार दे पांडे पैरां ते डिग पै, जे जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी वाले पैरां ते डिग पै, जे मक्के मदीने गए उत्थे मक्का मदीना गढ़ बगदाद नवाए के, बोलो गढ़ बगदाद आ नवाया ना। तुसी कहिंदे हो नवा दिता टेलीविजन दे उते, रोज अखबारां च पढ़दे हो कि बगदाद नू नवाता, मगर इनू नवाउण नू किन्ना चिर लगा ते की वरत्या।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਵੀ। ਬੀਬੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਵਾਰੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਪੱਟਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ

0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु
1: नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक
0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
0: सिद्ध कहिंदे ने असी सारी मंडली ने तुहानू धन कहा, हरिद्वार दे पांड्या ने तुहानू धन कहा, जगन्नाथपुरी वालिया तुहानू धन कहा, मुल्तान दे पीर तेरे चरणा ते डिग पे, मक्के मदीने वाले गढ़ बगदाद वाले तेरे चरणा ते डिग पे, आखिर राज की ध्यान दे जरा, आखिर राज की शक्ति की। ते धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने सिद्धू खोजत खोजत अमृत पिया, बोलो खोजत खोजत लभदिया लभदिया वह चीज लभ गई जिदे नाल फिर सारे मसले हल हो जांदे ने। खोजत खोजत अमृत पिया, अमृत पीता मैं जिदे करके जय जयकारा हो गई, जिदे करके जय जयकार हो गई, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, मन तन विच परमेश्वर वस गया। ते फिर सिद्धा ने अगला सवाल किया, ये जिहड़ा अमृत आ बड़ा कीमती आ? साहिब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां बहुत कीमती आ। आखिर फिर दिता की कीमत की दिती दे? ते बड़े प्यारे बचन गुरु नानक साहब ने जो उथे बोले, बड़े प्यार दे बचन ने, कहिंदे खिमा गई मन सतगुर दिया। अमृत नहीं उतरा मिलता जिना चिर मन नहीं अपने गुरु दे अगे अर्पण करना पैंदा, जिना चिर मन नहीं जीव आत्मा वेच देंदा। आ लोकी बहुते कहिंदे मेरा मन नहीं करदा, मेरा मन नहीं मन्या, मेरे मन की अजे परिपक्वता नहीं हुई। गुरमुख प्यारे हो, ये ते रोगी होए नू, इनू कोड़े होए नू, इनू विगड़े होए नू, मन बेचे

ससे जुड़ के जुड़ के साहब गुरु नानक पातशाह कहणगे सौदा कर लिया परमेश्वर दे नाल उस वाहेगुरु परमेश्वर नूं अपना मन वेच दिता है ते आख्या जी दिता है ते कुछ लईदा भी आ कोई चीज दईए ते उहदे बराबर लईदी मेरे साहब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां सिद्धो मैं लिया है कहिंदे की लिया है कहिंदे मन दिता वा ते खिमा लै ली खिमा निम्रता लै ली उहदे कोलों नीवा पन लै लिया उहदे कोलों निम्रता लै ली झोलियां भर लिया मन दे के अज जदों मैं कई बार पढ़दे आ ना तुसीं भी पढ़दे ते मैं भी पढ़दा सिखां दा रोज पढ़दे हो मन नीवा ते मत उची इतना हो गया जी उल्टी गल चल गई हुण मन हुण उच्चा हो गया ते मत इतना नहीं लगता ध्यान दियो अपने अंदर झाती मार के वेखो मन करके ते असीं कोठे ते चढ़े आ मन करके ते साडे वर्गा है ही कोई नहीं मन दे विच ते जिन्हों भी वेखदे कहिंदे ओ छड्ड इहदे वर्गा मैं इहदे नाल चंगा मन दे विच मन करके आपां रोज कहिंदे अरदास विच कि हे सतगुरु सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची होवे मगर कितना दी ए गल होगी साडे नाल वापर गई असि मन करके हंकारी बन गए मत करके नीवे हो गए मत इन्नी नीवी हो गई भरा नूं भरा वेख के राजी नहीं सिख सिख दा की आ बोलो जी की आ जे गुरु गोबिंद सिंह साडा प्यो आ ते सिख दा सिख की लगदा है इहदे नालों दूसरे भरा ते कदी धोखा दे देणगे दूसरे भरा नूं ते असी मन्निया है ना कि ए मेरा भरा है मन करके मन्निया ना ए ते गुरु ने मोहर कला के दिता कि एक पिता ते तू मेरा गुर हाई एक प्यो दी औलाद आ जिन्ने जिन्ने वाटे चो अमृत पीता वा कमाल दी गल आ उहदे प्यो दा नाम गुरु गोबिंद सिंह आ माता साहिब कौर आ उसे प्यो दा पुत उसे मां दा पुत एक दूसरे दा वैरी बनिया कदी रहत मर्यादा पढ़ के वेखो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु मैं बाहर ना चले जावा सारे मात्र आप जी नूं कहूंगा जो सिख सिख दी चुगली करे बोलो जो सिख सिख दी सो तनखाइया सो तनखाइया दा मतलब हुंदा है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च जिस तरह गुरमुख प्यारे चौर कर रहे ने तनखाइए नूं कोई हक नहीं गुरु दी हजूरी च चौर करे ध्यान दियो जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करे जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करके काज विगाड़े उह कड़ाह प्रसाद नहीं विगा सकदा प्रचार सकदा उह तनखाई है जिहड़ा सिख सिख दे दाड़े विच हथ पावे सो तनखाई है जिहड़ा सिख सिख दा मूंह खड़ावे सो तनखाई है मगर आपां अपने शीशे विच किते झात के वेखीए फिर असीं सारे ही तनखाई है इतना लगदा वा हे मेरे सतगुरु कदी कहना पऊगा हथ जुड़ के हम बारक मुगद आण हम बारक

जब आद सच नानक खुशी पे सच जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख प्रधान दासन दास कह जन नानक

सतनाम करता पुरख निर्भउ अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैती सच नानक खुशी भी सच

0: सो चंडी की भेट कराए, कहन लगे हम कारण गुर कुल गवाई, हम कुल राख है कमन विड़ाई। साडी खातर साहब ने इना कुछ कुर्बान कर दिता ते मैं अपने आप नू बचा के लै जा। प्यारियो, उस कलगी वाले ने जड़ी अमृत की दात दिती, ए केवल कर्म कांड नहीं, पंजां विच सतगुरु वरतदा है। बाणी रूप जदों ओ गुरु की बाणी भिज के पढ़दे ने, ओही जल अमृत बन जांदा है। जदों ओ जल सिख दे किरदे भी जांदा है, अंदर नू भी धो दिंदा है। जे नाल कमाई करिए पै वैसे रहत नामे विच इक शब्द उन्हां कहा, कहन लगे प्रथम रहत जे जान खंडे की पौल छके। उन्हां ने प्रथम रहत शब्द वरत्या, इहदा मतलब हर सिख लई लाजमी है, जिन्हें जीवन कमाना है उहदे लई प्रथम रहत शब्द वरत्या। रहत नामे वाले गुरसिखां ने कहन लगे उन्हां पंजां तों जदों अमृत लएगा अंदर भी गुरु किरपा करेगा, नेत्रां नूं भी गुरु किरपा करके स्वच्छता बख्शेगा, तेरे शीश भी जदों निपया अमृत ते जेड़े बचन तू पढ़ना गगन दमामा बाजियो परयो निशाना कहो, उत्थे गुरु की रहमत वरतेगी। साहब ने कृपा करके अमृत आप पान कीता, गुरसिखां नूं अमृत की दात दिती। मैं एक बेनती करके समाप्ति करना, प्रोफेसर पूरन सिंह ने एक शब्द बड़ा प्यारा वरते, असी अपने अपने ढंग नाल खालसे की परिभाषा संगत सामने रखने। कहिंदे ने जदों मेरे गुरदेव एकाग्रता बख्शना दमदमा साहब की धरती ते पहुंचे ने ना, ते भाई डल्ले ने रज के सेवा कीती, भावां सूबा सरहिंद ने अपने वल्लों किन्ना डरावा भी दिता है, पर कहिंदे ने तां वी ओह गुरु कलगी वाले दे चरणां दा भवरा बनिया रहा। एक दिन बैठिया अचनचेत एकाग्रता बख्शिया दे थोड़ी जी, एक दिन बैठिया अचनचेत भाई डल्ले दा जदों ये पता लगा के सूबे सरहिंद की धमकी की भी इन्हें परवाह नहीं की, हजूर ने हस के कहा डलिया जो कुछ तू मंगेगा मैं तेरी झोली विच पा देंगा, कुछ मंग तो सही। ते डल्ले ने बेनती की दातिया जे त्रुठ है ते कृपा कर अपने चरणा विच पीड़ी जिनी थां दे दे। साहब उस वक्त सोची पै गए ते अगो उत्तर बड़े कमाल दा दिता, कहन लगे डल्या थां लैना चाहना गुरु दे चरणा विच, सेवा कीती केवल दुनिया तक सीमित रह के, दुनिया दी सेवा करके तू दीन पिया मंगना है, जे गुरु दे चरणा विच दात लैनी आ ते चेते रखी अमृत दी दात लैके तेनू खालसा बनना पएगा। वाहगुरु जी का खालसा बन। उन्हें पूछा महाराज खालसे दी परिभाषा, साहब ने बड़े प्यारे बचन कहे, कहन लगे डल्या खालसा एदा मतलब ए नहीं कि जिवें आ तेरे किले ने इसे तरह वाहगुरु का खालसा है, आप शब्द परतने ना वाहगुरु जी का खालसा। कहन लगे जिवें तेरे किले ने इस तरह वाहगुरु का खालसा नहीं, जिवें तेरे हाथी घोड़े तेरी जमीन भूए पांडा इस तरह मेरा वाहगुरु का खालसा नहीं। कहन लगा फिर होर क्यों जहा खालसा है? ते साहब ने बड़े प्यारे बचन कह कहन लगे सजना अज किले तेरे ने, तू चला गया किले फिर भी कायम रहने ने, चेते रखी अज भूए पांडा जमीन तेरा है, कल नू चला गया जमीन फिर भी रहेगी। वाहगुरु जी का खालसा इस तरह नहीं। कहन लगे वाहगुरु जी का खालसा इस तरह है जिवें सूरज ते सूरज दिया किरणा कहें, जे सूरज है किरणा ने, जे सूरज ने ते किरण दी होंद की है। देखो कैसा संबंध है, आपां सूरज दी किरण कहने हैं पर इन्नी कु नेड़ता है, सूरज है तां किरणे। कहन लगे जिवें पानी ते पानी दा चश्मा है, सजना जेड़ा चश्मे विचों पानी निकलता है वह ताई निर्मलताई नाले जे ओदे नाल जुड़िया है ओदे तो टुट के ओ नहीं रह सकता। कहन लगे खालसा इस तरह है जिवें सूरज ते सूरज की किरण, जिवें पानी दा चश्मा ते पानी। कहन लगे जिवें एक रुख ते रुख की टाणी नाल लगा हुआ पत्ता, जे वह पत्ता जुड़िया ओदे अंदर हरियावल है। प्यारे ओ, उस वक्त साहब ने कहा डलिया जे कुछ लेना चाहना है दीन विच थां भालना ते पहला अपने अंदर गुरु नूं थां दित्ती आ, किलियां विच थां दे दित्ती, इस धरती ते तू रहण लई थां दित्ती, अपने अंदर गुरु नूं थां दे। कहिंदा साहिब जी मैं समझिया नहीं। कहन लगे अंदर तू अमृत दी दात पहला लै ते चेते रखी रुपये नाल अमृत नहीं। भगतां ने भी बाणी विच बचन कीते, कहिंदे ने नाम ते गुरु दी कृपा दौलत नाल नहीं। भगत रविदास दा सी बचन पढ़ने मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन कटै, जिन दर्द मता घट ना जाए। पुछया क्यों? कहन लगे मैं तो मोल महंगी लई किन्ने रुपये नाल। कहन लगे जी सतै अपनी जिद दे के। भगत कबीर ने वचन किया, कह लगे कंचन स्यों पाई है नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। साहब ने बाणी विच क्या कह लगे चेते
1: खरीदा जान लब तान हो क्या।

शपर तुट में हो हरिता जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़ वसी रब हयाली है जंगल क्या टूंडे हैं हरिदा इन्नी निकी जंगी है थाल डूंगर पव्यों आज फरीद कुजड़ा सैकू हाथियों हरिदा इन्नी निकी जंगी है

शिष्य रखु कृपाता जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जियो जित दिहाड़े तन बरी साहे ले लिखाए मलक जे कन्नी सुनींदा मोह दिखा ले आए जिंद निमानी कड़िये हड्डा कुकड़का

पातशाह कहन लगे चंदन चंदन नू लेप कर लो पिंडे दे उते मन दा सुख ता नहीं। चंद्रमा दी चाननी दे अंदर रात पर बैठे रहो मन ता ठंडा नहीं हुंदा शरीर ठंडा होएगा क्योंकि काम गर्मी तपश चली गई है मन दे अंदर। ते फिर जदो बंदा हार गया अक गया अपने अवगुणा दी गर्मी तो ते फिर इन्हें करदास कीती पातशाह जेड़ा काम जेड़ी गर्मी मेरे मन दे अंदर बह गई गर्मी मन विच चली गई उस गर्मी नू मिटाउण वास्ते कोई इलाज है। ते पातशाह ने ना अगो इलाज बयान किया हुण जेड़ी पंक्ति गुरु बाबे ने बख्शी सतगुरु ने कही इन्हां बोलां नू तुसी अपने जिहन नशीन करन दा अवश्य यतन करियो अंदर वसाउण दा यतन करियो। जिन्नू ठेठ पंजाबी दे अंदर कह दईदा ना मेरी गल नू पल्ले बनना इन्नू अपने मन दे अंदर टकाउण दा यतन करियो। पुछया सतगुरु नू के अंदर दा रोग मिटे किवें ते ऐलानिया कह रहे ने शीतल थीवै। फिर मैं अर्ज करा लहिंदा पंजाब जो पाकिस्तान दे अंदर रह चुका है ओदे अंदर एक इलाका है चंग मुल्तान दा उस पाशा दा उत्थों दे इलाके दा गुरबाणी दे अंदर किधरे किधरे थोड़ा जिहा रंग मिलदा है जिवें आ पा लफज है ये चंग मुल्तान इलाके दा लफज है। तो हुण इत्थे भी कह रहे ने शीतल थीवै थीवै मैंने हो जाना ते थीवै लफज भी चंग मुल्तानी पाशा दा है। कहन लगे शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम जे अपने अंदर नू शीतल करना चाहना है ठंडा करना चाहना है ते कहन लगे इको ही राह है रब जी दे गुणा दा जाप करना शुरू कर रब जी दे गुणा नू अंदर वसाउना शुरू कर रब जी नू चितवना शुरू कर परमात्मा दी याद दी तेरे अंदर माला चलनी शुरू होवे। रोग अंदर है माला तेरे हाथ वे चल दी है अंदर दा रोग की मिटे रोग तेरे अंदर है अंदर तेरा किधरे होर चलदा है माला तेरी किधरे होर चलदी माला हाथ दी चले ना चले दे नाल लम्मा फर्क नहीं पैना पर तेरे मन दे अंदर परमात्मा दे गुणा दी माला अवश्य चले तेरे मन दे अंदर परमात्मा दी याद अवश्य चले। जो मन दे अंदर गुरु बाबे दी बाणी चलेगी गुणा नू आप अंदरों अंदरी चितवोगे याद करोगे ते याद करके वेखना उन्हां गुणा नू याद करन करके तुहाडे मन दी तपश मन दी गर्मी सारे दी सारी उतर दी नजर आएगी। हजूर कहन लगे शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी। अमृत बाणी नू सुनो इदे गुणा नू अपने अंदर वसाउण दा यतन करो अंदर दी तपश बुझ जाएगी अंदरों शांति अवश्य मिलेगी। अज दा महावाक भगत फरीद साहब जी दे सलोक नू जिन्नू आधार बना के मैं बेनतियां कर रहा। भगत जी कहिंदे ने किज ना बूझे किज ना सूझे कोई गल समझ विच आ ही नहीं रही क्यों नहीं समझ विच आ रही। कहन लगे दुनिया गुजी पा दुनिया गुजी हुई छिपी हुई अग दे अंदर सड़दी बलदी नजर पै रही गुजी अग दे अंदर। हुण जे अग झुलसदी होवे अंदरों अंदरी अग बलदी होवे उस अग दे उत्ते आप बहुत सारियां लकड़ां लिया के ढेर रख दियो ते हेठां अग बलदी होवे पर मध्यम जी छोटी जी अग बलदी होवे उत्ते आप लकड़ां दा ढेर जमा कर दियो अग ते इकरां लग जाएगी तुहानूं कि बंद हो गई अग दा रूप रंग दिसना बंद होया पर ओ जेड़ी अंदर एक चिंगारी बल रही है ना बिल्कुल दीवे दी लो जिनी अग बल रही है उन्हें मना मुई लकड़ा नू साड़ के तबाह करके वड्डे वड्डे पांबड़ दा रूप बन के मचना शुरू कर देना जेड़ी अंदर एक चिंगारी बल रही है। असी उपरों उपरों लेप करन दा यतन करने आ उपरों उपरों ते लेप करन दा साडे कोल चारा की है जी पग इस तरह दी बन लो इहदा रंग इस तरह दा कर लो बनन दा तरीका चेंज कर लो गल विच माला पा लो चोला लम्मा कर लो चोले दा रंग इस तरह दा कर लो इहदे नाल अंदर दी अग बुझ जाएगी। गुरबाणी नू आप पढ़न सुनन वाले हो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शरण विच बैठे हो मैं खिमा मंग लवां किसी वीर भैन कोई इस तरह का वचन मिलिया हो के चोले का रंग चिट्टा पाउण दे नाल मन चिट्टा हो जाता है ते मैनू दसन की कृपा जरूर करियो। किसी नू इस तरह का वचन मिलिया हो के जे पग फलाने रंग दी बनोगे ते मन का रंग बदल जाएगा ते मेरे उत्ते रहम

इच्छा रहया दूर। देख फरीता जेथिया सकर होई बिस, साई बाजों अपने वेदन कहिए किस।

रंग नवेला होए महला तीजा फरीदा काली तौली साहिब सदा है जे को चित करे अपना लाया पिरम ना लगे जे लोचे सब को एहु पिरम प्याला खसम का जय पावे तें दे फरीदा जिन लोयन जग मोहिया से लोयन मैं डिठ कचल रेख ना सहंदया से पंखी सुवे बहिठ फरीदा कुकेंदियां चांगेंदियां

0: है कौन। तो भगत फरीद साहब जी दे ए श्लोक, इस तो अगला श्लोक जो भगत फरीद साहब जी दी बख्शिश, कह लगा फरीदा खाक ना निंदी है, पैरां दे थले जो खाक है भगत जी कहिंदे ने उन्नू ना निंद, खाकू जेड ना कोए, उस खाक वर्गा मिट्टी वर्गा कोई भी नहीं है, जीवन दिया पैरां तले मोया उपर होए, जिउंदिया तेरे हेठ रहिंदी है, मरण तो बाद वो तेरे उत्ते आ जांदी है। जो मनुख निर्माणता विच चलदा है वो बेशक लोकां दे पैरां दी खाक बन के चलदा है, गरीब बन के चलदा है, पर जद उहनूं फल मिलदा है तो सारिआं तों उत्ता उच्चा चला जांदा है, उच्चा उठ जांदा है, सारिआं तों उच्चा। इस तरह ही भगतां दे जीवन विच होया, इस तरह ही गुरु साहिबानां दे जीवन विच होया, जो नीवे बन के चले ने वो उच्चे हो गए, ते जो उच्चे बन के चलन दा यतन करदे रहे वो नीवे दे नीवे ही रहे। आपस कहो जो जाने नीचा सो गणिये सब ते ऊंचा। धन गुरु अर्जन देव साहब जी इस तरह भी सुखमनी साहब की बाणी में हुक्म फरमा रहे ने, आपस कहो जो जाने नीचा सो गणिये, ओनू एवें समझ लो सब ते ऊंचा, ते जिहड़ा अपने आप नू उच्चा समझदा है वह उच्चा भी नहीं हुंदा, वह बल्कि नीवा ही रह जांदा है और सदा वास्ते है। भगत फरीद साहब जी दे इन्हां सलूकां नू आधार बना के कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करन दा निमाणा यतन कीता गया।
1: वाहिगुरु साहिब जीओ, फरीदा राती वड्डियां दुख दुख उठन पास, त्रिग तिन्ना दा जीविया जिन्ना विदानी आ।

दी गई कथूरी गंद जो बन जांदे ना डरा जे शह प्रीत न जाय फरीदा किती जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वान दुख

एक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक गोद दा आनंद पा रहे हो। सरवण कर रहे सी गुरु के कीर्तनिया पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन श्री आसा जी दी वार दा। मन बिरतियां एकागर करिए ते जुड़िए चल रही लड़ी वार कथा जो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों चल रही है। भगत जी दा फरमान नाती तोती संभ ही सुती आए नचेंदा, जीव इस्त्री ना तोके। संभ ही दा मतलब हुंदा है सज संवार के अपना शिंगार करके, ना के कपड़े बदल के इशनान पान करके शिंगार हार करके सब कुछ करके ते निश्चिंत होके सौ गई। पति दे नेड़े नहीं गई, पति नू मिली नहीं है, पति नू याद नहीं फरमाया, पति दे मंदर विच प्रवेश नहीं कीती। हार शिंगार इशनान पान करन तो बाद फरीद जी कहन लगे निश्चिंत नचिंद। नचिंद दा मतलब निश्चिंत, चिंता तो रहत, निश्चिंत होके सौ गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंगदी, हिंगदी बदबू बड़ी है ते दूसरे पासे गुलाब दे फुलां दी सुगंध भी बड़ी है, चंदन दी महक भी बड़ी है। जिमें चंदन दी महक अपने विच नवेकली थां रखदी है, हिंगदी दुर्गंध भी इस तरह अपनी जगह दे उते नवेकली थां रखदी है। अखिया तेरे मन दे अंदर हिंग वर्गी बदबू रही, रही कथूरी कंध ते कस्तूरी वर्गी महक तेरे जीवन दे अंदर पैदा ना होए। इस श्लोक नूं खोलण दा यतन करदा चला। बंदा धार्मिक शिंगार ते कर लैंदा है पर धार्मिक बनदा नहीं है। तन करके धर्मी बन जाना बड़ा आसान है, मन करके धर्मी बन जाना परम कठिन है। जिन्ना वेशभूषा पहरावे तन करके धर्मी दिसना आसान है, उन्ना ही मन करके धर्म दे अंदर प्रवेश कर जाना ए महान है। बड़ी दुनिया धर्म दे अंदर प्रवेश कर जांदी है तन करके, मन करके प्रवेश नहीं करदे। किसी दे हाथ दे अंदर गीता फड़ी होवे, गीता दा पाठ करदा होवे, तीन धारियां वाला तिलक ओदे मत्थे उत्ते होवे, तेरे धागे दा जनेऊ ओदे गले विच होवे, धोती उहने बद्धी होवे, इस तरह दा अडंबर वेख के आप कह दोगे कि इह हिंदू धर्म दे अंदर खास मनुख है। गीता हाथ विच फड़ी रह जांदी है, जे कोई गीता दा सलूक मन विच नहीं गया ते फिर उह सही हिंदू अजे नहीं बनिया। ठीक दूसरे पासे भावे कुरान दी तलावत करदा होवे, हाथ विच तस्बी रखदा होवे, मोढे दे उते मुसल्ला रखदा होवे, सूफ गल होवे, भावे उहदा लिबास काला होवे। सूफी संत अक्सर लिबास काला पाउंदे सन, मोढे दे उते मुसल्ला। मुसल्ला कहिंदे ने जिहड़े कपड़े नूं विछा के नमाज पढ़ी जानी है, मोढे ते मुसल्ला होवे, सुन्नत होवे, मुच्छां कटियां होण। बाहरों नजर पेगा मुसलमान है ते पक्का मुसलमान है, कट्टड़ मुसलमान है। पर जे कुरान दी एक भी आयत उदे मन विच नहीं वसी ते उस कुरान दी आयत दे मुताबक वो अपने जीवन नू गुजार नहीं रहा ते कदा मुसलमान है। भावे सिर दे उते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू रखिया होवे, हाथ विच गुटका होवे और वेशभूषा चोला लम्मा होवे, गिट्टियां तक चार माला सुटियां होण, दाड़ा प्रकाश होवे, पग दा रंग चंगा होवे, पोच के बीबी पग बद्धी होवे, वेखण नूं ते नजर आएगा बे सिख है ते सिख भी खास है, सिख है ते सिख भी कट्टड़ है।
पर जे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा एक भी बचन उन्हें मन विच वसाया नहीं ते उन्हां बचना दे अनुसार वो जीवन दे अंदर चल नहीं रहा ते फिर कादा सिख है, फिर ते बगले वाला लिबास से फिर कादा सिख है। तो मैं अक्सर एक बेनती करया करदा कि गीता दी जगदी हुई रोशनी मंदिर दी चार दवारी दे अंदर कैद होके रह गई है। हिंदुआ दे जीवन दे अंदर गीता दे सलोक नहीं आए, जे आए ने ते बड़े थोड़े हिंदुआ दी जीवनी दे अंदर। कुरान दे पवित्र ग्रंथ दियां आयतां, कुरान दी जगदी हुई शमा, कुरान दी रोशनी मस्जिद दी चार दवारी दे अंदर बंद है। मुसलमाना दे जीवन विचों कुरान नजर नहीं आउंदे, अगर आउंदी है ते वह मुसलमान उंगलियां दे उत्ते गिने जा सकदे ने, बड़े थोड़े। खिमा मंग लवा, गुरु ग्रंथ साहिब जी का महान ज्ञान प्रकाश ते ए जगदी हुई सच्चाई दी शमा गुरुद्वारे दी चार दवारे दे अंदर बंद है। साढ़े जीवन विचों बाणी का कोई बचन नजर नहीं आउंदा, और मेरा बोल शायद तुहाडे मन नूं चोट करदा होवे, हकीकत है। दुकान ते बह के यही चेहरा कोई होर रूप बटा लैंदा है, गुरुद्वारे दे अंदर यही चेहरा होर हुंदा है। धर्म यह नहीं है कि चलो गुरुद्वारे जाना है, बह के दो घड़ियां सुनना है, जां सुनाउणा है, मत्था टेकना है, ते हाथ विच दात्री फड़ के रखनी है, जिहड़ा दुकान ते आ गया रगड़ के धर देना है, छिल ला लैनी है, या कारोबार दे अंदर दूसरे दा हक खाना है, वधीकी करनी है, नफरत करनी है, ईर्ष्या करनी है, सारा दिन चुगली, सारा दिन निंदा। अगर ये सब बुराइयां मन दे अंदर मौजूद ने ते फिर सिख ता हां, पर विखावे दे सिखां हकीकत वे सिख नहीं है। सिखी केवल बारले पहरावे दा नानी, और ये बेनती मैं अक्सर करता ही रहना। क्यों करता रहना? क्योंकि साडा ध्यान बार जुड़दा है, पहरावे दे उत्ते जुड़दा है, अंदर नहीं जांदा है। गुरबाणी दे नेम, गुरबाणी दे नुक्ते, गुरबाणी दे सिद्धांत अपने मन विच वसाओ, ते कारोबार करदिआं वक्त, वेखदे वक्त, बोलदे वक्त, सोचदे वक्त, चलदे वक्त तुहानूं गुरबाणी दे ओह बचन चोट करदे रहन कि तू इस मार्ग ते चलना, इस मार्ग दे उत्ते नहीं चलना। अगर ते आप बाणी दे अनुसार चल रहे हो, कह सकने आ सच्चे सिख हो। खिमा चाहवांगा नहीं चल रहे ते फिर पेखी सिख हो, केवल पेख करके। पहरावे तो नजर आ रहे सिख हो, पर अंदरों सिख नहीं हो। उहदे विच मैं भी आप भी शामिल हाँ, तुसी भी शामिल हो। तो खैर, भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने एक सुहागण ने इशनान पान कर लिया है, हार शिंगार कर लिया है, पर पति दे नाल सुला सफाई नहीं है, पति दे नाल मन मुटाव है, ते फिर वह सुहागण कादी होई। कहना की चाहुंदे ने कि धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलदियां चलदियां बंदा धर्म दे अडंबर बारों बारों कर लैंदा है, पर पति परमात्मा दे नाल सुला सफाई नहीं, लैन देन नहीं, बैन उठन नहीं, पति दे विचारां दे नाल सहमति नहीं। ते भगत जी कहन लगे फिर अपने आप सुहागण है, अपने आप दे अंदर सिख है, हकीकत विच नहीं है। हुण मैं एक होर बेनती आप संगत दे सन्मुख करदा चला। एक पासे एक पागल मनुख, दूसरे पासे एक रब दा प्यारा भगत मनुख, इन्हां दोवां दे मन दे अंदर जप चलदा है, दोवां दे मन दे अंदर। जो आम अकल दे तल नूं छड के, अकल दे तल नालों थोड़ा उच्चा उठ के जीवन गुजार रहा है, रब दा सच्चा संत, सच्चा भगत, कबीर साहब, नामदेव साहब ते रविदास साहब वर्गा, उन्हां दे मन विच भी जप

तू सरदार जोन विचों है, सरदार जोन दे अंदर होन करके तेरे फर्ज ने तू अपने फर्जा तो किनारा काशी ना कर, अपने फर्जा नू संभाल, फर्जा नू याद कर, फर्जा नू पूरिया कर। तेरे कुछ फर्ज तेरे अपने लिए ने, तेरे कुछ फर्ज तेरे परिवार लिए ने, कुछ फर्ज समाज लिए ने, कुछ फर्ज संसार लिए ने, ते कुछ फर्ज तेरे अपने लिए ने। तू परिवार दे प्रति ते अपने सारे फर्ज पूरे कर रहे हैं, तू अपने प्रति की कर रहे हैं, फर्ज पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहा। परिवार दे प्रति तेरा फर्ज है, तेरा परिवार है, तू उन्हां बच्चियां नू जन्म दिता है, उन्हां दी लालना पालना करनी तेरी जिम्मेवारी है, तू उन्हां ते एहसान नहीं कर रहा। कमा के उन्हां नू भोजन देना, बना के खवाउणा ते मां बाप दी जिम्मेवारी है, एहसान नहीं है। तू ए ते फर्ज कर रहा है बिलकुल मुकम्मल तौर दे उत्ते पूरा, पर दूसरे पासे अपने संबंध विच तेरा फर्ज है, तू अपने मन नू सुरताल तरतीब विच करना है। इस फर्ज तो दौड़दा होया नजर पै रहा, किनारा काशी करदा होया नजर पै रहा, अपने लिए की कर रहा है। मैं बहुत खुलिया लफजा दे अंदर बेनती करा, मैं कथा कर रहा, तुसी मैनू पैसे दे रहे हो, मैं अपने वास्ते निजी तौर ते मेरा नेम की है, मेरा नितनेम की है, मेरा परमात्मा दे नाल जुड़न दा समा की है, मैं किन्ना समा जुड़दा, मैं अपने वास्ते की कर रहा, तुसी अपने लिए की कर रहे हो, ये भी ते फर्ज पछानना तुहाडा है, तुहाडी जिम्मेवारी है, तुहाडा फर्ज है, पछानो। प्यारियो, भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने, जोबन जांदे ना डरा, जोबन जा रहा है पर फर्ज पछानन तो बगैर जा रहा है, जोबन जा रहा है हनेरे दे अंदर टकरा मारदा होया जा रहा है, जोबन जा रहा है इस तरह जा रहा है कि जिवें अन्ना होया हाथी चलदा है, मस्त चाल दे अंदर इस तरह चल रहा है। जोबन जा रहा है पर किथे जा रहा है, गुरुद्वारिया मंदिरा मस्जिदा में जोबन जा रहा है। जोबन जांदा होया वेखना होए ते पब्बा क्लबा में जाके वेखो, जोबन सारा उथे टुकिया होया नजर पाएगा, जोबन उथे बैठा होया नजर पाएगा। जोबन जा रहा है पर जा किथे रहा है, अयाशी दे अंदर जा रहा है, बदमाशी दे अंदर। अज दी सदी जिनू पढ़ी लिखी ते ज्ञान याफ्ता सदी कहने, मैं ते हैरान हुंदा कि मनुख ने जवानी नू जिवें राखवी रखे है, जवानी नू जिवें रिजर्व कर लिया है गुनाह करने वास्ते, कि जवानी दे अंदर दुनिया भर दे गुनाह करने ने, जवानी दे अंदर पाप कमाउणे ने, जवानी दे अंदर दुराचारी करनी है, जवानी दे अंदर हर धोखा धड़ी करनी है, ते बुढ़ापे नू रिजर्व रख लिया परमात्मा दे नाल जुड़न वास्ते। ए जरूरी नहीं है कि हर शरीर दे उत्ते बुढ़ापा आएगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं किसी दी जवानी पूरी निभ पाएगी या नहीं निभ पाएगी, जरूरी नहीं है। तो खैर, जोबन जाते रहा है, जा किधर रहा है, हनेरे दे अंदर जा रहा है, पटकदा होया जोबन नजर आ रहा है, जोबन कोई सफला हुंदा नजर नहीं आ रहा। खिमा चाहवांगा बोल कुछ कौड़े ने और मन नू चोट ना करन। भगत जी कहन लगे, जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए, मेरा जोबन चला जाए मैनू डर नहीं है, झिझक नहीं है, मैं जोबन नू छड्डन लई तैयार हां, कुर्बान करन लई तैयार हां। पर पुछिया, भगत जी जोबन दे इवज चाहिदा की है, जोबन दे बदले चाहिदा की है? आखिया, शह दी प्रीत, परमात्मा दी प्रीत चाहिदी है, रब दा प्रेम चाहिदा है। अगर जोबन दे के खुदाई प्रेम मिल गया है ते समझ लो सौदा बड़ा सस्ता मिल गया है, बड़ा सस्ता मिल गया। पता नहीं किन्नी वारे जोबन मिलिया है ते किन्नी वारे सुक गया है बुराइयां दे अंदर, कुमला गया है बुराइयां दे अंदर, ते जेड़ा बूटा सुक जांदा है, कुमला जांदा है, उन्नू ना पत्ते ही लगदे ने, ना फुल ही लगदे ने, ते ना फल ही लगदे ने। अगर तुहाडे जोबन नू सत संतोख दा फल नहीं लगा, भौ भावनी दे फुल नहीं लगे, श्रद्धा प्यार दीआं टहिणीआं शाखावां ने इस जोबन दे उत्ते जन्म नहीं लिया, तो फिर जोबन सुक्का समझो, जोबन नू हरिया मत समझो। जोबन दे अंदर की है, निरा सोका, निरा कमलाउना, पर ए सोका कमलाउना नजर कित्थों आ रहा है? क्योंकि जेड़ियां टहिणीआं सुक जांदियां ने, मुरझा जांदियां ने, उन्हां दा रूप रंग चला जांदा है, उन्हां दी बहार चली जांदी है, सुंदरता चली जांदी है। मनुखी मन दी सुंदरता अलोप है, कुमलाया मुरझाया होक्या झोरिया दे अंदर नजर पै रहा है, कोई

नहीं ते कोई शांति सुकून जोबन दे अंदर नहीं, निरा अग्यान निरिया टकरा। जोबन दे अंदर जोश बड़ा है पर जोबन दे अंदर होश दी अख तो बगैर चल रहे हैं। ते जे जोबन होश दी अख तो बगैर चले ते जोबन हर दे पानी तरह होता है, ये रोड के लै जाता है, नुकसान बड़ा करता है। जोबन दे अंदर जोश होना जरूरी है पर नाल होश दी अख मिलना होर जरूरी है, बड़ा लाजमी है, बड़ा जरूरी है। अगर होश तो बगैर जोबन नू खुला छड़िया जाए ते ए जोबन नुकसान बड़ा करता है। अगर इस जोबन नू होश दे किनारे मिल जन, होश इनू एक सीमा दे अंदर बन के चलाए ते फिर एक दरिया दे पानी नदी दे पानी नू किनारियां दे विचकार विचकार रोकदे रोकदे भावे सैकड़े मील दूर लै जाओ पानी नू, वो पानी नुकसानदायक नहीं है जो चल रहा है पर दो किनारियां दे विचकार चल रहा है। वो पानी नुकसानदायक है जो किनारियां नू तोड़ के चल रहा है, फसलां नू तबाह करेगा, पिंडां आबादियां शहरां नू तबाह करेगा और मनुख नू तबाह करेगा। जो हड़ दा रूप बन के आया है, जवानी जोबन हड़ दा रूप बन जांदी है जद इनू किनारे ना मिलन, इनू सीमा ना मिले, इनू होश दे नेत्र ना मिलन। अगर ये होश दे सीमा दे अंदर बजी हुई चले ते इस जोबन कोलों समर दा बड़ा कुछ है। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, जोबन जांदे ना डरा, जोबन चला जाए मैनू कोई डर नहीं है, पर इस दे इवज मिलना की चाहिदा है, परमात्मा दा प्रेम मिलना चाहिदा है। फिर मैं चलो मुखसर बेनती होर करदा ही चला, जिस प्रेम नू असी प्रेम जान लिया है हकीकत दे अंदर वो प्रेम नहीं है। ये प्रेम ते पशुआं कोल भी हुंदा है, शरीर शरीर दी कशिश विच रहिंदा है, शरीर शरीर दी पकड़ विच रहिंदा है, बड़ा नीमी पत्र दा प्यार है, बड़ा हौली क्वालिटी दा प्रेम है, शरीर नू शरीर दे नाल प्रेम है। और एक शरीर दूसरे शरीर को रज जाता है, शरीर को भर जाता है, तो वह शरीर फिर दूजे शरीर लभण वास्ते चल पैंदा है। शरीर नू बदलना, शरीर दे नाल प्यार करना, यह पशु दे तुल प्रेम है। यह प्यार ते पशु कोल भी है, तुहाडा प्रेम थोड़ा उचेरा होना चाहिए सी। दूसरा प्रेम है मानसिक तल दे उते, मैनू इहदी जात पात धर्म मजहब कौम रूप रंग दे नाल कोई लैण देण नहीं है। इहदे मन दे विचार ते मेरे मन दे विचार मेल खा गए ने, मन दे विचार मेल खा जाण मित्रता बनदी है, विचारां दे अंदर तकरार बन जाए तो फिर दराड़ बन जाती है मित्रता दे अंदर। मित्रता किवें बनदी है? केवल मित्रता विचारां दे सहारे, विचार मिल गए ने तो मित्र है, विचार टकराने शुरू हो गए ने तो मित्रता खत्म है, दराड़ पै जांदी। कल तक दे मित्र अगले दिन दुश्मन बने हुए मिलते ने, क्यों? एक दे विचार उच्चे हो गए ने, एक दे विचार नीवे हो गए ने, विचारां दे अंदर तकरार हो गया, विचारां दे अंदर टकराहट पैदा हो गई। नंबर एक दा प्रेम बड़ा नखित पद्धर दा हौली पद्धर दा प्रेम, केवल शरीर दा रूप रंग नक्शो निगार वेख के किसे दे नाल प्रेम करना, पशु दे तुल प्रेम है। दूसरा प्रेम शरीर तो अगे चला गया है, हुण शरीर दे नाल लैण दे नहीं, इहदा शरीर काला है, शरीर गोरा है, नक्शो निगार किस तरह दे ने किस तरह दे नहीं, गल इस तो अगे चली गई। हुण गल विचारां दे उत्ते आ गई, इहदे मेरे विचार मेल खा रहे ने प्रेम है, नहीं मेल खा रहे प्रेम टुट जांदा है। इस तो अगे एक होर प्रेम है, उहनू कहिंदे ने आत्मिक पद्धर दा प्रेम। मैनू सारिआं दे अंदर परमात्मा दी आत्मा नजर आए, पहला मैनू परमात्मा दी अंश अपने विच, ओही परमात्मा दी अंश सारिआं दे अंदर, ते जद आत्मिक पद्धर दा प्रेम बनदा है तो फिर सारिआं दे अंदर खुदा दी होंद भी महसूस होनी शुरू हो जांदी है, जो मेरे विच है ओह तेरे विच है। की फर्क पैंदा है तेरे शरीर दा रंग किस तरह दा है, नक्शो निगार किस तरह दे ने, तू किस जात धर्म मजहब दे अंदर जन्म लिया है, की फर्क पैंदा है? गल ते ए है कि मिट्टी दे भांडे ने कुमार ने बनाए ने, तेरा रंग काला कर दिता है, मेरा रंग चिट्टा कर दिता है, तेरिया अखां दा आकार थोड़ा बदा दिता है, मेरा छोटा कर दिता। की फर्क पैंदा है कि तू एक नगर दे अंदर जन्म लिया है, तू दूसरे नगर दे अंदर जन्म लिया है, मिट्टी ते के। तो खैर आत्मिक पद्धर दा प्रेम ए सर्वोत्तम प्रेम है।
आत्मिक पत्र दा प्रेम करन वाले ए नहीं वेख दे इदा रूप रंग नसल जात भेद की है। वो वेख दे ने आत्मा मेरे विच आत्मा ही दे अंदर। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे निरंकार जोबन जांदा है चला जाए, जोबन जांदा डर नहीं है, पर मैं ए चाहना कि कम से कम इस जोबन दे अंदर ते खुदा तेरी होंद मैनू नजर आए, इस जोबन दे अंदर ते मेरा प्रेम उच्चा बन जाए। बड़े जोबन मेरे गए ने शरीरां दे नाल प्रेम कर करके, बड़े जोबन गए ने, एक जोबन नहीं, सुख गए कुम लाए कितनी जोबन, किन्ने जोबन, किन्ने जोबन गए ने मेरे अज्ञानता दे अंदर पटकद्या पटकद्या टकरा मारद्या मारद्या, किन्ने जोबन चले गए ने। मैं जात पात दे बंधन दे अंदर बजदा रहा, मैं ईर्षा द्वेष दे झगड़े उठाउंदा रहा, निंदा चुगली दे अंदर चलदा रहा, ते जोबन खिसकदा रहा। समय ने ते नहीं टिकना, समय नू तुसी संभालना है, संभालो समा तां वी अपनी चाले चलदा है, समय नू ना संभालो समा तां वी अपने चाले चलदा है। अज दा दिन आया है चार पैर दा जीवन लैके इन्हें बीत ते जाना है, किसे दा दिन सुकून दे अंदर ते किसे दा दिन रोंदिया धोंदिया बीतेगा, किसे दा दिन हानि दे अंदर किसे दा दिन लाभ दे अंदर बीतेगा, दिन ने बीत जाना, गया होया दिन वापस लिया के मुड़ तो इनू खर्च करना इनू सवारना है साडे वस विच नहीं है, गया सो गया इनू वापस मोड़ना साडे वस विच नहीं है। तो समा जोबन दा जेड़ा आया इन्हें चला जाना है, जोबन दे समय दे अंदर अपने बाकी फर्ज पूरे करो, गुरु साहबान रोकदे नहीं है, गुरमत वरचदी नहीं है, पर जेड़ा तुहाडा अपने लई फर्ज है वह भी पूरा करो, पातशाह सानू केवल चेता ही करा रहे हैं। और भगत जी कहन लगे जोबन जांदे ना डरां जे शह प्रीत ना जाए, फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए। बड़े वारे जीवन मिलदा रहा, एते कर हम बहुत बसाए तब हम राम गर्भ होए आए, बड़े वारे जीवन मिलिया जोबन मिलिया पर जोबन चला गया। भगत रविदास साहब भी ऐलानिया अरदास कर रहे ने खुदावंद करीम दे सामने कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ते हुण जन्म मिलिया ते जोबन ते मिले गए, कदी चलो मिल गया कदी ना मिलिया, पर समझण वास्ते कह लिए जोबन बड़े मिले। भगत रविदास साहब भी मिलदे जुलदे लफज वरत रहे ने, वो भी कहिंदे ने कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। फरीद साहब कहिंदे ने प्रेम चाहिदा है, ते रविदास साहब कहन लगे निरंकार दीदार चाहिदा, गल एक ही है, तेरा प्रेम तेरा दीदार इस जोबन दे अंदर हो जाए, मेरा जोबन सफला हो जाए, मेरा जोबन मुबारक हो जाए। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र ते निकी गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, भगत फरीद साहब जी दी रसना द्वारा उचारे हुए श्लोक दो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। इन्हां दोहां श्लोकां दे अंदर ही बिरहा दा जिक्र है। सब तो पहला बंदे दे मन दे अंदर मोह बनदा है, मोह, और मोह दी परिभाषा इस तरह कह लईए कि जो घर दी चार दवारी दे अंदर अंदर रहे उहदा नाम मोह है। घर दी चार दवारी दे अंदर अपना परिवार चंगा लगदा है, दूजियां दे परिवार चंगे नहीं लगदे, अपने बच्चे चंगे लगदे ने दूसरे दे बच्चे चंगे नहीं लगदे। तो मोह खतरनाक ता है क्योंकि मोह दे अंदर अपना अपना लगदा है ते दूजे अपने नहीं लगदे, तो जद दूजे अपने लगदे नहीं तो फिर किसे दूजे नूं उजाड़न लग्यां डर भी किस चीज़ दा है।
जद कोई दूसरा अपना लगदा ही नहीं तो अपना नहीं तो फिर दूसरे दे नाल हमदर्दी भी कादी है। मोह दे अंदर बंदा दूसरे नूं उजाड़ सकदा है अपने आप नूं वसाउण लई। मोह दे अंदर बंदा दूसरे दे कारोबार नूं बंद कर सकदा है अपना कारोबार चलदा रखण लई। मोह दे अंदर बंदा दूसरे बच्चे दे मुंह विचों भोजन खो सकदा है अपने बच्चे दे पेट पूर्ति वास्ते। मोह दे अंदर दूसरे नूं दुख दे सकदा है अपनियां खुशियां ले। दूसरे नूं रुवा के अपनियां खुशियां लभण दा यतन करदा है ओह बंदा जिस बंदे दे मन दे अंदर मोह है ते मोह दी तारा बड़ी प्रबल ते डूंगी हो के चल रही है ये बंदा मोह तों कुर्बानी दे जांदा है। तमाम गुणा दी मोह दे उत्तों कुर्बानी कर देंदा है। हुण थोड़ा समझदा दायरा वधना शुरू हो जाए इसनों सारे ही अपने लगने शुरू हो जान। गुरबाणी दी कथा कीर्तन सुनदिया सुनदिया गुरबाणी दा कोई वाक मन नूं चोट कर जाए इन्हों सारिया विच परमात्मा नजर आना शुरू होवे महसूस करे जिस तरह दे मेरे बच्चे ने उस तरह दे दूसरियां दे बच्चे ने। जिस तरह दा दुख मेरा है इस तरह दा ही दुख दूसरे दा। जिस तरह दा गरीबी दे अंदर मैं दुख नूं हंडा रहा गरीबी सारिया वास्ते इको जिही दुखदाई है दूसरे लिए घट नहीं है। जिन्ना कलेश मेरे अंदर इन्ना ही कलेश दूसरे दे अंदर है। प्रेम दे अंदर आया होया बंदा किसी नूं दुख देने तो पहला उस जगह दे उते अपने आप नूं खड़ा करके वेख लैंदा है। अगर इस जगह दे उते मैं खड़ा हुंदा ये बंदा मैनू दुखी करन दा यतन करदा तां मेरे मन दे उते की बीतदी तां मेरे मन दी दशा की हुंदी। प्रेम दे अंदर आया होया बंदा इन्हां गल्लां दी विचार करनी शुरू कर देंदा है। तो जद ये गल्लां विचार दे अधीन आ जान तो फिर पाप हुंदा ही नहीं है अपराध हुंदा ही नहीं है। पाप अपराध कदों हुंदा है मन ने बुराई नूं चितवया है ते तन उसे वक्त ओह कम करन वास्ते उठ के तुर पिया है। मन ने कह दिता है विचारी करनी चाहीदी है तन उसे वक्त नालों नाल इस राह दे उत्ते चल पिया है अपराध होया ते पाप होया। मन ने कह दिता है चोरी होनी चाहीदी है तन नालों नाल उठ के किसी की जेब कतरन लई किसी का घर उजाड़न लई चोरी करन लई चल पिया अपराध होया पाप होया। अगर मन कह चोरी करनी चाहीदी है ते तुसी इस विचार नू विचार अधीन कर लो परखना शुरू कर दो रिड़कना शुरू कर दो भी ये कम चंगा है जां बुरा है तो आप चंद समय बाद पाओगे तुहाडे मन दा भी मनोबल डिग गया है। मन दे अंदरों हुण आवाज आ रही है पर बड़ी मदम फिर विचारी जाओ इस विचार नू रिड़की जाओ कुछ समा बीत जाण तों बाद पाओगे विचार मन विचों निकल ही गया है चोरी करन दा इरादा ही बदल गया है। मैला विचार बनदियां सार मैला कर्म करन वाले बड़े वड्डे पापी दुराचारी अपराधी जगत दे अंदर मिलदे ने। मैला विचार बन जाए उन्नू समा देना उस विचार नू डिले करना इस तरह दे मनुखां कोलों ना पाप हुंदा है ना अपराध हुंदा है। तीसरी क्वालिटी दे ओह मनुख ने जिहड़े बहुत उत्तम ने जिन्हां दे मन दे अंदर मैला विचार बनदा ही नहीं है। खैर किसे वक्त मैं फिर अर्ज करांगा अर्ज मैं कर रहा सां प्रेम दे अंदर अपने बच्चियां वर्गे दूसरे दे बच्चे भी नजर आ जांदे ने ते जद दूसरे दे बच्चे भी मेरे बच्चियां दे बराबर दिस रहे ने तो फिर दूसरे दे बच्चे नूं रुवा के अपने बच्चे नूं हसाउण दा यतन किवें कर सकांगे। दूसरे दे बच्चे दे मुंह विचों भोजन दा टुकड़ा खोह के अपने बच्चे दे पेट दे अंदर किवें तोर सकांगे क्योंकि दूसरे दे ते अपने दे अंदर हुण कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। फिर इस तरह दी अवस्था दे अंदर पहुंचिया होया मनुख दूसरे दी गरीबी दूसरे दी दीन दशा दूसरे दी भुख नूं वेख के मिटाउण दा यतन करदा है ना मिटा सके ते उहदे हिरदे दी डूंघाई विचों इक अरदास हुंदी है नानक नाम चढ़दी कला
तेरे पाने सरबत दा भला। फिर वह अरदास करदा है निरंकार सब दा भला कर। ठीक के मेरी लोड़ है भोजन, पर दूसरे दी लोड़ भी ते भोजन है, इकली मेरी लोड़ ते नहीं है। मेरी लोड़ है कपड़ा, दूसरे दी लोड़ भी ते कपड़ा है, इकली मेरी लोड़ ते नहीं है। जो मेरिया लोड़ा ने उस समाजिक प्राणी होने दे नाते सब दिया लोड़ा ने। मैं किसे दिया लोड़ा खो लवा, दाता खो लवा और अपनिया लोड़ा पूरिया करा, ये मैनू शोभा नहीं देंदा। फिर वो दूसरे नू भी हसाउण दा यतन करदा है जितनी उसकी समर्था है, ते जद समर्था खत्म हो जाती है ते फिर वो अरदास करदा है परमात्मा सब दा भला कर। सब दा भला मंगण वाला सब दे घेरे दे अंदर आप भी आ जाता है। इस तरह नहीं है कि आप सब दे घेरे तो बाहर रहिंदा है, सब दे दायरे विच आप भी आ जाता है। सब दे घेरे दे अंदर तमाम पशु परिंदे जीव जंतु मनुख मातर सब कुछ आ जाते हैं। दिसन वाले ना दिसन वाले सारे जंतु आ जाते हैं सब दे घेरे दे अंदर। तो एक दस्तूर है जो सब दा भला मंगदा है वो कर पावे ना सके, क्योंकि करना तो उन्हें ही है ना जिनी समर्था है, कर पावे ना सके पर जो मंगदा है परमात्मा उहदा भला अवच करदा है। ते जो दूसरे दा बुरा मंगदा है, एक दस्तूर है परमात्मा दा बनाया होया, उहदा अपना बुरा हुंदा है अवच हुंदा है। दूसरे दा बुरा मंगना एवें समझ लो अपने वास्ते बुराई मंगन दा तुसी राह खोल रहे हो, तुहाडा बुरा होवे ए यतन कर रहे हो। दूसरे दा भला मंगना समझ लो ए यतन कर रहे हो कि मेरा भला होवे। अगर ए नुक्ता समझ विच आ जाए ते आप कदी किसे दूसरे दा बुरा मंग ही नहीं पाओगे। मैं ना लफ्जां नूं दोबारा दोहरा दिया, दूसरे दा बुरा मंगोगे बुरा कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी देना है परमात्मा ने देना है, साडे हाथ विच ते है नहीं। असी किसे दे कोलों खोई तुरे जावांगे लई जावांगे, अगर परमात्मा ही उहदी जेब भरी जा रही है ते असी लै लै के थक जावांगे, देण वाला कदी थकदा नहीं है। तो अर्ज मैं कर रहा सां दूसरे दा बुरा करना जां बुरा मंगना इस तरह समझ लो कि तुसी अपना बुरा आप ही कर रहे हो, अपने हत्थां दे नाल ही अपने पैरां दे उत्ते कुहाड़ा मार रहे हो। दूसरे दा भला मंग के तुसी अपना ही भला मंग रहे हो, एक सूत्र है परमात्मा दा दस्तूर है। अगर ये नुक्ता समझ विच आ जाए तो धर्म दे राह दे अंदर इस नुक्ते दे जरिए तुहानू बहुत वड्डी सफलता प्राप्त हो सकती है। धर्म दे राह दे उत्ते चलदिआं चलदिआं रीढ़ दी हड्डी दा इक मणका है सब दा भला मंगना, भला वेखना, भला सोचना। असीं भला मंगदे भी नहीं आ, भला करदे भी नहीं आ, भला सोचदे भी नहीं आ, तो फिर हुंदा की ए जीवन दे अंदर बुरा हुंदा है। जीवन दे अंदर कले कलेश दुख दलिद्र बन जांदे ने, तो फिर साडे कोल उहनूं मिटाउण वास्ते राह की है। फिर भी ये नहीं कि जिस कारण करके बीमारी बनी है हुण मैं वह कम ना करा, कम ओही करना है। हुण अगला नुकता है बस $5 देने ने अरदास करवा लेनी है ताकि मेरा भला होवे, इस तरह भला हुंदा नहीं है। दूसरे कोलों पाठ करवा लेना है ताकि मेरा भला होवे, ते खुद करना नहीं, खुद करना नहीं, परहेजगार बनना नहीं, शुभ कर्म करना नहीं, तो फिर जीवन दे अंदर कले कलेश हो के चोरे ये सब कुछ बढ़ता तुरिया जाता है। खैर मैं अपने विषय वाल मुड़ा। नंबर एक दे उते है मोह, फिर इस तो बाद अगे चल के आंदा है प्रेम। ये प्रेम का दूसरा रूप है कि सब का भला मंगना। जिस हिरदे दे अंदर मोह है ते मोह दी तारा बड़ी डूंगी ते बड़ी तिखी चलती है, ओ भला मंगदा जरूर है पर केवल अपना ते अपने परिवार दा भला मंगदा है, अपने वास्ते मंगदा है दूसरे वास्ते नहीं। दूसरे दा लख नुकसान हुंदा है हुंदा रहे मेरा ना होए। और मेरे कोल इस तरह दा एक प्रेमी मैनू मिलिया भी सी, एक मार्केट दे अंदर किधरे अग लग गई दिवाली दे दिनां दे अंदर, दुकाना 10-12 सड़ के राख होईयां तबाह हो गईयां, उहदी दुकान बच गई सबब दे नाल। गुरुद्वारे आउंदा है प्रसाद लेके, अरदास करवा रहे निरंकार तेरा मैं शुक्र गुजारा मेरी दुकान बच गई है,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 10-12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਖ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੌਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਚਾਹ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਸ਼ਬਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਖੈਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿਰਦਾ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਉਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਬਖਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿਰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਪੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਦਾ ਪੱਕਦਾ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਕਦਾ ਪੱਕਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਗਊ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਖੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਮਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦਹੀਂ, ਰੰਗ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਸਤੇ? ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦਹੀਂ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਝੇ ਸਿੱਝੇ ਉਹਨੂੰ ਮਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਥਦਿਆਂ ਮਥਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਖਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਸ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ, ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਦ ਪੱਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਰਾਗ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਬਰੇ ਜੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਵੈਰਾਗ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੰਝੂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਰਮ ਜਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਟਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਗਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੀ ਕਰੋ ਛੇੜੋਈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੰਝੂ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਆਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਝੂਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਹਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੁੱਖ ਦਾ ਤਣਾ ਪੱਕਦਾ ਪੱਕਦਾ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਤਣਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤਣੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਣਾ ਝੂਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਮਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤਾਕਤਵਰ ਤਣਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਟਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੂਮਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਝੂਮਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੂਮਦਾ। ਪੱਥਰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਝੂਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਧਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵੈਰਾਗਮਈ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਦੀ ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਬੜੇ ਕਠੋਰ। ਤੋ ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਗ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਟੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਖਟੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਰਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਲਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਯੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂਗ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂਗ ਇਹੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਸਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮਿਲ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ,
हुण ते मेरी बेनती प्रवान कर। तो फिर इस तरह भी कहिंदे ने भगत रविदास साहब जी कि निरंकार तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर अपत्यार क्या कीजै। मेरे वर्गा दीन कोई नहीं है, दुखी कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं है, ते तेरे वर्गा निरंकार दयालु भी कोई नहीं है। हुण कितनी बेहबलता कितना वैराग हिरदे दे अंदर उठिया होएगा जो खुद नू कह रहे ने मैं बहुत नीवा परमात्मा तू मेरे सामने बहुत उच्चा। तो कहन लगे अब पतियार क्या कीजै, हुण मेरा अजमाउणा कीए पतियाउणा कीए, मेरी परखी करनी है। बचनी तोर मोर मन माने जनको पूरन दीजै। जद मेरा मन मानी गया तेरे बचना नू, मेरा मन सहमत हो ही गया तेरी बाणी दे नाल, मैं पूरी तरह तेनु समर्पण कर ही दिता है। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निए पाई है। मैं हुक्म मन भी रहा, तन दी पेटा मन दी पेटा धन दी पेटा तेरे चरणा विच रख दिती है। तो हुण मैनू अजमाउणा की होया, तू ते अंतर जामी है अंदरों जानना है, हुण मैनू की पत्याउणा है की पत्यार कर रहा है मेरी। तो कह रहे ने फरीदा चिंत खटोला मैं परमात्मा तेरा मलाप नहीं होया। इस विषय नू आधार बना के जेडी चिंता बनी पता नहीं इस जन्म दे अंदर भी मिलेगा या इस तरह ही जाना पाएगा, खाली हाथ ही मुड़ना पाएगा, इनू मैं मंजी बना लिया। चिंत खटोला वाण दुख। तो हुण परमात्मा दा विछोड़ा है ते उस विछोड़े दे अंदर एक रस भी है, विछोड़े दे अंदर एक दुख भी है। विछोड़ा आम जिहड़ा दुनियावी विछोड़ा हुंदा है इहदे विच रस नहीं हुंदा, इहदे विच इकल्ला दुख हुंदा है। मां धी दा विछोड़ा, पिता पुत्र दा विछोड़ा, भाई भाई दा विछोड़ा, पति पत्नी दा विछोड़ा, मित्र मित्र दा विछोड़ा, धन दा विछोड़ा, तंदुरुस्ती दा विछोड़ा या होर तरह तरह दे विछोड़े। इस विछोड़े विचों केवल दुख मिलदा है, सुख नहीं, कोई रस नहीं, केवल दुख, इकला दुख। परमात्मा दा विछोड़ा इस तरह दा विछोड़ा है इथों दुख भी मिलदा है ते इथों एक रस भी मिलदा है। दुख मिलदा है बहुत वड्डा, रस मिलदा है बहुत वड्डा, दोवें चीजां इकट्ठियां मिलदियां ने। रस परमात्मा नालों टुटन नहीं देंदा, दुख एहसास बनाई रखदा है कि परमात्मा नूं मिलन दा यतन प्रयतन होर कर, जोरदार कर, मंग कर, अरदासां दे विच लगा रह, साधना दे दौर विचों गुजरदा रह। मेहनत मुशक्कत करन वास्ते दुख प्रेरणा करदा है ते जुड़े रहन वास्ते विचकार जो काम करदा है वह मिलिया होया रस काम करदा है। परमात्मा दे विछोड़े विचों अकै रस मिलदा है ते नाल दुख मिलदा है। विछोड़े विचों मिलदा दुख है, परमात्मा दे विछोड़े विचों अकै रस भी मिलदा है। यही कारण है कि भगत फरीद साहब जी कहन लगे वाण दुख चिंता नू मैं मंजा बना लिया है, ही हां सेरू बना लिया है, पावे बना लिया है, ते वाण फिर उस मंजे नू बुनना भी ते है, वाण भी ते चाहिदा है, ते फिर वाण बना लिया है। परमात्मा जो तेरे ते मेरे विछोड़े विचों दुख मिल रहा है उनू मैं वाण बना लिया है। चिंत खटोला वाण दुख बिरह विशावन लेप। हुण मंजी ते तैयार हो गई, मंजी दे पावे चाहिदे ने। भगत जी ने चिंता नू पाव्यां दी जगह दे उत्ते वरत लिया, मंजी दियां हीयां सेरू चाहिदे ने। ते भगत जी कहन लगे मैं चिंता नू इस जगह दे उत्ते वरत लिया, मंजी मुकम्मल होवे वाण चाहिदा है। कहन लगे मैं दुख नू वाण जान लिया। मंजी मुकम्मल हो गई पर इस मंजी दे उत्ते फिर बिस्तर भी ते चाहिदा है, विछाउणा भी ते चाहिदा है। कहन लगे बिरहा विशावन लेप, हे निरंकार तेरा वैराग तेरा बिरहा उनू मैं उपर लैण वास्ते लेप रजाई बनाया, उनू ही मैं हेठां विछाउण वास्ते तलाई बनाया है। विशावन लेप विछाया मैं बिरहे नू, उपर लियाए मैं बिरहा। दिन पर रात मेरे जीवन दे अंदर बिरह ही बिरहा रहिंदा है। कहन लगे ए मेरा जीवन है, बिरह विशावन लेप एहो हमारा जीवना, तो साहिब सच्चे वेग।
हे मेरे साहिब हे मेरे निरंकार मेरे जीवन दी चाल इस तरह दी है जो मैं तेरे सामने बयान कर रहा कदी रुक करके मेरे वल वेखता सही कि तेरे नाल प्यार करने वाला वैरागी हिरदा किस तरह जीवन गुजारदा है। वैराग में हिरदे वाले मनुख दे पास तन दौलत पदार्थ बहुत सारे होन पर उनो इन्हां दे नाल लगाव नहीं रहिंदा अगे चला जांदा है। निरंकार तू मिले तां गल बनदी है तेरे तो बगैर नहीं। इस तरह दे मनुख नूं कोई दूसरा मनुख जमीन जायदाद मिलखो मिकदारी देवे कोई लालच देवे तेनू ए कुछ मिलेगा छड परमात्मा दे राह नूं की लैणा चल के नहीं मिलदा ना सही केड़ा सारी दुनिया ने रब नूं पा लिया पर उह रुकदा नहीं है। वैराग मन दे अंदर इको ही है यतन प्रयतन इको ही है अरदास मन दे अंदर इको ही है हुण उह साधना दे दौर विचों दी निकलण दा यतन कर रहा है ते उम्मीद अरदास एक ही करदा है निरंकार तू मिले ता मेरे मन दा चैन मेरे मन दी शांति तू ना मिले ते फिर मेरा जीवना कादा जीवना होया। एक सच्ची सुहागण दी अरदास इस तरह दी सच्चे जग्यासु दा जीवन इस तरह दा ही है। एहो हमारा जीवना मेरा जीवना चिंता दे अंदर मेरा जीवना दुख दे अंदर मेरा जीवना अधूरा जिहा ते परमात्मा कदा जीवना है तेरे तो विछड़ के जीवना भी कोई जीवना है तू मेरी अरदास सुन ते मैनू मिल इस तरह बेनतियां करदा होया नजर पैंदा है। शेखशादी साहब जी ने रब दे प्यारियां दियां नौ निशानियां बयान कीतियां ने नौ निशानियां वो कहिंदे ने रंग जरद सब तो पहले निशानी रब दे प्यारे दा रब दे आशक दा चेहरे दा रंग बदल के जरद हो जांदा है। जरद दा मतलब पीला पैना चौल बनाउंदियां ने प्रशादे लंगर दे अंदर चौल बांदे ने उन्हां विच पा दिओ पीला रंग ते आपां पंजाबी विच कह दिंदे आ जरदा बनाया है जरदा जरदे दा मतलब पीले रंग वाले चौल जरद फारसी दे अंदर पीले नूं कह दिंदे ने। रब दे नाल जुड़िया होया वैराग में हिरदा शेख शादी साहब कह दिंदे ने रंग उहदा जरद रहिंदा है रंग जरद आहे शरद ठंडे हौके उहदे विचों निकलदे रहिंदे ने मन विचों ठंडे हौकियां दा जन्म हुंदा है ते ठंडे हौके क्यों परमात्मा दे विछोड़े दे कारण। रब दे संबंध विच वैराग बड़ा है जनून शाजे एक जनून जिहा बन जाए कि ऐ मंजिल पा के ही रहना है ऐ कुछ मैं करके रहना है तो जितना समा वह मंजिल आ पा ना लो ना खाना चंगा लगता है ना पीना चंगा लगता है ना पहनना चंगा लगता है ना सुनना चंगा लगता है ना बहना चंगा लगता है। लोग नचते टपते हसते गाते ने पर जिदे सिर के उ जनून छाया हों वो कहिंदा क्यों रौला रप्पा पाया है क्यों शोर शराबा उन्हूं कुछ चंगा नहीं लगता ना अन्न ना पानी ना कपड़ा ना मंदर ना पदार्थ कुछ भी नहीं हुण मंजिल मिले तो शांति ताए मंजिल तोरा टिकाणा किधरे भी मिले शांति नहीं है। वैराग में हिरदे रहिंदे ने इस तरह रंग जरद आहे शरद नंबर तीन दे उत्ते चसम तर चसम मैंने अखां तर मैंने तर रहिंदियां ने वगदियां रहिंदियां ने रब दे आशकां दियां रब दे प्यारियां दियां निशानियां अखां उन्हां दियां हर वक्त वगदियां नजर पैंदियां ने। परमात्मा दे मार्ग दे उत्ते चलदियां चलदियां रस्ते दे अंदर एक मुकाम आउंदा है एक स्टेज मन दी बनदी है मानसिक दशा इस तरह दी बनदी है और इस दशा विचों दी गुजरदियां गुजरदियां ही अगे निकलना पैंदा है गुजर के ही अगे परमात्मा मिलदा है यह अवस्था लाजमी आउंदी है। ये हुण नालो नाल विचार तुसी करी जाने मेरा मन मोह दे अंदर है मैं प्रेम दे अंदर हाँ या मैं वैराग दे अंदर हाँ मैं किथे खड़ा तुहानू अपने बारे जितना पता है इतना दूसरे नूं नहीं पता खुदा जानदे ने साडे संबंध विच असीं आप जानदे हाँ अपने संबंध विच दूजा नहीं जानदा तो आखिया चसम तर उहदे नेत्र वगदे नजर पैंदे ने। भगत कबीर साहब जी दे बचन आउंदे ने बाणी विच वो कहिंदे ने मंदर चढ़के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो परमात्मा हिरदा इन्ना वैराग में बन गया है कि कोठे दे उत्ते मंदर दे उत्ते खलो के मैं राह तक रहा तेरा
ਤੇ ਰਾਹ ਤੱਕਦਿਆਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨੈਣ ਨੀਰ ਭਰੇ ਆਇਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗਮਈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਭੜਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਕਿਧਰੋਂ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਉੱਭੀ ਪਈ। ਸੁਹਾਗਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਭੜਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸੁਪਨੇ ਉੱਭੀ ਪਈ, ਗਹਿਓ ਕੇ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅੰਚਲ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਗਹਿਓ ਕੇ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਿਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ ਪੈਨੇ। ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਪਰਮ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੰਚਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਈ। ਤੋ ਖੈਰ ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਯਤਨ ਬਿਤਾਏ ਜਿਤ ਪਿਰਿਓ ਪਾਈਐ। ਪੈਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸ ਜਿਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੀ ਰਵਾਂ। ਸੋਈ ਯਤਨ ਬਿਤਾਏ ਜਿਤ ਪਿਰਿਓ ਪਾਈਏ, ਆਖਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਇਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸੱਕਾਂ ਤੁਝ ਕਣ ਪਿਆਰੇ। ਹੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਭੇਜ ਨਾ ਸੱਕਾਂ ਕੋਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਭੇਜ ਨਾ ਸੱਕਾਂ ਕੋਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ਹੁ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦਰ ਤੂੰ ਆ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਕਾਮੁਕ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਆ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦਰੀਏ ਮਤ ਸ਼ਹੁ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ, ਮਤਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੁ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦਰੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੈਰਾਗਮਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੌਰਾ, ਮਸਤਾਨਾ, ਦਵਾਨਾ, ਪਾਗਲ, ਮਜਨੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਵਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੀ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਵੈਰਾਗਮੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਖਰ ਬੋਲ ਪਈ, ਆਖਿਆ ਨੀ ਵੇਖੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜਨੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਿਰਾ ਹੀ ਮਜਨੂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੜਾ ਭੜਕਿਆ, ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਗਲ ਮਜਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ
ਜਿਹੜਾ ਮਜਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਜਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮਜਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਕ